0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise Radio. This is Sunrise with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: Can I use my phone a friend? A call Raj.
1: जी बिल्कुल।
2: Hi Raj, listen, is it bronze bank, silver bank, gold bank or platinum bank?
3: It's definitely gold bank.
2: I'd like to go with Raj's answer, please. Gold bank.
1: बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
0: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ऑल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
4: द बिग आर्च जस्ट गॉट बेकन, मोर स्मोकीनेस, मोर क्रिस्पीनेस, मोर डिलीशियसनेस विद जूसी बीफ, चेडर चीज एंड द बिग आर्च सॉस नाउ टॉप्ड विद क्रिस्पी बेकन। द बिग आर्च जस्ट गॉट बेकन।
5: Until 28th of September 2026, served from 11 a.m. subject to availability.
6: There's only one Gaviscon. There's only one Gaviscon.
7: When the sport's on, you might feel your heart in your mouth, butterflies in your stomach, or a churning in your gut. That's fine if it's just the action. But if it's heartburn or indigestion, try Gaviscon Double Action Tablets for pocket-sized, on-the-go relief. Don't let your heartburn or indigestion spoil your day. Gaviscon Double Action Chewable Tablets for heartburn and indigestion. Always read the label.
8: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
9: Yes!
8: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
10: At DFS, we know there are so many places to sit in summer.

0: celebrating 36 years of excellence.
1: Sunrise and music.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 or visit AsianFuneralCare.com. Start.

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: बहुत हुआ setback. अब होगा मेरा comeback.
2: A dream waiting to be revived. Watch Dr. Arambhi Monday to Friday 7 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हिट ऑफ द आवर आप तक पहुंचाने से पहले दिस इज द मैसेज दैट जे इन पिनर सेंट मी यस्टरडे यू आस्क्ड अबाउट समथिंग सोल सैटिस्फाइंग डन दिस ईयर इन पिनर वी हैव अ बुक हब रन सिंस कोविड 2020 मिरियम इट हैज इन एक्सेस ऑफ 5,000 बुक्स फ्रॉम ओल्ड टू न्यू टू डेज स्पेंट बिल्डिंग एंड फिनिशिंग न्यू कस्टमाइज बुक केसेज वेरी प्लीज टू हेल्प मिरियम एंड द कॉस्ट वॉज अ नॉमिनल £500 प्लस माई टाइम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर टिम्बर हैविंग इट कट डिलीवर्ड टू मिरियम्स हाउस Also, custom-made rainproof covers donated to fit the bookcases at night or on days when the weather's wet and windy. I feel happy to help a good cause. Everything donated in the name of my late father. Reading is to the mind as exercise is to the body. Absolutely. It's just that I think people like me should remember that what you start, you must finish, right? I've never done this before. Honestly, I must go back to those three books at some point.

0: 1985 की फिल्म एतबार का ये गाना भूपिंदर जी और आशा जी की आवाज में। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। नीलम एंड माया एंड अंकित, मोहित, सायरा, प्रीत, सुब्रू, प्रवीण, रोशनी, शर्मिला, दीपा, अंशु, अमरीन, रश्मिता, श्री, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली योर वोट्स।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय उत्सव प्लस।
2: आई लव यू डॉक्टर नोइनिका।
3: ये तुम्हारा बचपना है, प्यार नहीं। उम्र देखिए तुमने अपनी, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता।
4: तब तक लोगों की परवाह करती रहोगे,
0: Watch Serab, a heartfelt musical romance every day at 6 p.m. only on Utsav Plus. Thursday the 23rd, aap sun rahe Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. Now, if you're craving something truly delicious, there's some fantastic news for you. Your favorite authentic Indian dishes from General Bilimoria's Canteen can now be delivered straight to your door. Just search General Bilimoria's Canteen on Google Play Store or Apple App Store. Download the brand new GB Canteen app and enjoy no delivery fee, no service charge, plus 25% off when you order through the app. And of course, there's more. Every app order gives you the chance to win a delicious two-night European getaway. Terms and conditions apply. Download the GB Canteen app today and treat yourself to authentic Indian flavors delivered fresh. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Question: this red paranda has been in our basket at checkout all season. आप खरीदेंगे इसे? तो जल्दी से खरीद लीजिए, otherwise you might get a message saying unidentified item in baggage area, bagging area. It's been there for too long. पति पत्नी और वो दो, काली तेरी गुत, काली तेरी चोटी, you know that one.

0: B-Brock on the vocals, Janjar. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे की सुबह शबनम साही के साथ. संतोषी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. दैट वाज द सजेशन, द एडवाइस दैट यू गेव मी द लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन ऑन राउंड रोटीज. यू सेड, लुक, इफ यू कांट रोल देम आउट राउंड, शबनम, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यूज आइदर अ कुकी कटर और अ प्लेट और अ कटोरी और व्हाटएवर एंड डू इट दैट वे. दैट वुड बी चीटिंग, दैट वुड बी ऑफसाइड, वुडंट इट? मिस्टर खान सेज, वो पागल मस्त है अपनी वफा में, वो पागल मस्त है अपनी वफा में, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं. 0792-57272, the number to WhatsApp me on. Saira in Cheltenham is listening to me in the car. आप कहां सुनते हैं ये शो? What is on your to-do list? Not when you're on holiday, but on most days, most of the year. What is on your to-do list between 9 a.m. and noon, Monday to Friday? 0792-57272 is where you let me know.
1: Listener's Choice, brought to you by Utsav Plus.
2: I love you, Dr. Noemi. Love you, Doctor.
3: ये तुम्हारा बचपना है, प्यार नहीं. उम्र देखिए तुम अपनी. हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता.
4: तब तक लोगों की परवाह करती रहोगी, परवाह करती रहोगी.
0: Watch Serab, a heartfelt musical romance every day at 6 p.m. only on Utsav Plus. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Shweta in Doncaster, thank you so much for your love. War 2 ka ye gana mera favorite gana Jubin ki awaaz mein. ढलता सूरज रास्ता बतला जाएगा, जीते जीते हमको जीना आ जाएगा. अरे ना भी आया तो किसी का क्या जाएगा, जीते जीते हमको जीना आ जाएगा. ऋतिक रोशन, NTR जूनियर, कियारा अडवाणी, जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं, होप यू हैविंग अ ग्लोरियस थर्सडे. 0792-57272 has been filled with beautiful messages that are making me quite emotional and making me feel very old.

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।